चली यह दुख। सो क्यों विसरै मेरी माए, साचा साहेब साचै नाए। रहाओ साचे नाम की तिल वडे आई, आख थके कीमत नहीं पाई।

सात राग गुजरी महला चौथा हर के जान सतगुर सतपुरखा बिनो करो गुर पास हम कीरे किरम सतगुर सरणाई कर दया नाम परगास मेरे मीत गुरदेव मोको राम नाम परगास गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई हर कीरत हमरी रहरास रहाओ हर जन के वडपाग वडेरे जिन हर हर सरदा हर प्यास हर हर नाम मिले त्रिपतासह मिल संगत गुण परगास जिन हर हर हर रस नाम ना पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास तन तन सत संगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम परगास राग गुजरी महला पंजवा काहे रे मन चित वह उदम जा आहर हर जियो परया सैल पत्थर में जंतु उपाए ताका रिजक आगे कर तरया मेरे माधव जी सत संगत मिले सो तरया गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरिया रहाओ जनन पिता लोक सुत बनता कोई न किसकी तरिया सिर सिर रिजक संभा

तेरे शरिया। तिन कवन खलावै कवन चुगावै मन मह सिमरन करिया। सब निदान दस

राग आशा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्यावह सब त्यावह तुद जी हर सच्चे सिरजन हारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावह संत हो जी सब दुख विसारण हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी हर एको पुरख समाना एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज विडाणा

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवें कबियो बाच बेनती चौपाई। हमरे करो हाथ दय रक्षा, पूरन होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सबे तुम कावो, आप हाथ दय मोहे बचावो। सुखी बसे मोरो परिवारा, सेवक सिख सबे करतारा। मोर अच्छा निज कर दय करिए, सब बैरन को आज संगरिए। पूरन होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें शाड कोई अवर ना त्याऊ, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिय है, चुन चुन सत्र हमारे मारिय है। आप हाथ दय मुझे उबरिय, मरण काल का त्रास निवरिय। हुजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जो करे हो रक्षा। राख ले हो मोहे रखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे।

आत्मा सा जवन काल जोगी सेवकियो वेद राज ब्रह्मा जूथियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जक्षण उपजायो आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सुवारी सेवकन को सेव गुण सुख दियो सत्रन को पलमो बद कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर असथूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछानै घट घट के पट पट की जानै जब उदकर्ख करा करतारा प्रजा तरत तब देहे अपारा जब आकर्ख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देहे तार सब हूँ जेते बदन सृष्ट सब तारै आप आपनी बूझ उचारै तुम सब ही ते रहत निरालम जानत बेद भेद अर आलम निरंकार निर्बकार निर्लंभ आद अनिल अनाद असंभ ताका मूड उचारत भेदा जाको भेव ना पावत बेदा ताकौ कर पाहन अनुमानत महामूड कश भेद न जानत महादेव कौ कहत सदा सेव निरंकार का चीनत नह पेव आप अपनी बुद्ध है जेती बरनत भिन्न भिन्न तोहे तेती तुमरा लखा न जाए पसारा किह बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक पायो राव कही पूपा अंडज जेरज से तज कीनी उत्पुज खान बहुर राच दीनी कहूं फूल राजा हवै बैठा कहूं सिमट पयो शंकर इकैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंपव आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दोष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण खाता जे अस तुझ तब सरनी परे तिनके दोष्ट दुखित हवा मरे पुरख जवन

तनक मोहर हो। रिद सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह श्वाय सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास ते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, दारिद दुष्ट दोख ते रहा।

सहाय दुष्ट दुख ते ले हो बचाई। सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आनेओ। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक ना मानेओ। सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहे हम एक ना जाने।

समरथ स्वामी सो क्यों मनहु विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहेबा क्या नाही घर तेरा। घर ता तेरा सब किशो है जिस देह सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे। नाम जिन कै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहेब क्या नाही घर तेरा। साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा। जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसिया। जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटहाओ जिस दिया ए वडियाइया। कह नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारू। साचा नाम मेरा आधारू। वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै। घर सुभागै शब्द वाजे कला जित घर धारिया। पंच दूत तुद वस कीते काल कंटुक मारिया। तुर कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे। कह नानक तह सुख हुआ तित घर अनहद वाजे। आनंद सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे। दुख रोग संताप उतरे सुने सच्ची बाणी। संत साजन पहे सरसे पूरे गुरते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित सत गुर रहया।

अपनी सेवा प्रवान करनी जी अपना जुटा नहीं खाना और कार्य पैसा भाई अंकार सिंह की तरह की जैसे पासों पावन पवित्र कीर्तन शर्म करिए जी बलाओ फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु जी।

काम क्रोध अर लोभ मोह भिन्स जाए अहमेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव।

डोलन दंडौत बंदन अनेक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ।

कबीर जो मैं चितवाओ ना करे, क्या मेरे चितवे हो। अपना चितव्या हर करे, जो मेरे चित न हो। कबीर जो मैं चितवाओ ना करे, क्या मेरे चितवे होए। अपना चितव्या हर करे, जो मेरे चित न हो। महला तीजा चिंता पे आव कराए सी, अचिंत पे आपे दे। नानक सो साला ही है, जे सबना सार करे। महला पंजवा कबीर राम ना चेतेओ, फिरया लाल चमाहे। पाप करंता मर गया, अहद पुनी खिन माहे। कबीर राम ना चेतेओ, फिरया लाल चमाहे। पाप करंता मर गया,

पिंड, कहो नानक सब तेरी वडियाई। वाहे गुरु। बोलो जी, बोलना जी। एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवत जी सहाय वार श्री भगवत जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कह गुरु नानक लेई त्याय, फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास से हुई सहाय। अर्जन हर गोविंद नो सिमरो श्री हर राय, श्री हर कृष्ण त्याई है जे डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै घर नौ निदावे ताए, सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह। साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, सब थाई होए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत। शब्द गुरु, गुरु ग्रंथ साहब जी दे पाठ दर्शन दीदार जी का ध्यान करके खालसा जी। बोलो जी, बोलो जी। निमाणिया दे माण, निताणिया दे ताण, न्योटियां दी ओट सचे पातशाह। धन धन धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, आप जी दे मुबारक दर ते अरदास बेनती है सचे पातशाह। आप जी दे पाणे अंदर चार पहर दिन सुखां दा बतीत होया। महाराज जी अमृत वेले तो आप जिया ने इस वेले तक खुले दर्शन दीदार दे के निहाल कीता है। रात दे दीवाना दी संपूर्णता हुई। आप जी दी सेवा संभाल सोहला साहब जी दी बाणी दा जाप कीता गया। गुरु गरीब निवाज बेअंत संगता ने तिल फुल लैके आप जी दे दर दियां हाजरियां भरिया ने। सब दियां भेटावां दर कबूल करना महाराज जी। सब दे घरां विच सुख वरतायो, सब दे कर दे लो लंगर तप दे रखना महाराज जी। रहण आई है सुखमई बतीत कराउनी, सेवादार हाजर ने आग्या बख्शिश करो। निज स्थान सचखंड पलंग ते विराजमान होवो जी। अमृत वेले फिर दर्शन बख्शना सुख होवे। नाम चितावे नानक नाम चढ़दी कला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

रतन त्याग कौडी संग रचै साच छोड़ झूठ संग मचै जो षडना सो अस्थिर कर मन जो होवन सो दूर परान छोड़ जाए तिसका श्रम करै संग सहाई तिस पर हरै चंदन लेप उतारै धोए गर्तभ प्रीत भस्म संग होए अंध कूप में पतत बिकराल नानक काट लिहु प्रभ दयाल करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करे दिन रात बाहर भेख अंतर मल माया शपश नाहे काश करे छपाया बाहर ज्ञान ध्यान इसनान अंतर व्यापै लोभ सुवान अंतर अगन बाहर तन सुआ गाल पाथ कैसे तरह अथा जाके अंतर बसे प्रभ आप नानक ते जान सहज सुमात सुन अंधा कैसे मार्ग पावे कर गै लिहु ओड़ निभावे कहा बुझारत बुझे डोरा निस कही है तौ समझे पूरा कहा बिस्न पद गावे गुंग जतन करे तौ पी सुर भंग कह पिंगल पर्वत पर पवन नहीं होत ऊहा उस गवन करतार करुणा मैं दीन बेनती करे नानक तुमरी कृपा तरह संग सहाई सुहावे न चीत जो बैराई तास्यो प्रीत बलुआ के ग्रह पीतर बसै आनंद केल माया रंग रसै दृढ़ कर मन मन प्रतीत काल न आवे मूड़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महा लोभ त्रो याहू जुगत बेहाने कई जन्म नानक राख लेहो आपन कर कर्म तू ठाकुर तुम पै अरदास जियो पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारिक तेरे तुमरी कृपा मैं सुख कनेरे कोई न जाने तुमरा अंत ऊचे ते ऊचा भगवंत सगल समगरी तुमरा सूत्र तहारी तुम ते होए सो आज्ञाकारी तुमरी गात मित तुम ही जाने नानक दास सदा कुर्बानी सलोक देनहार प्रभ छोड़क लाग है आन सुहाय नानक कहू न सी जाई बिन नावै पत जाए अष्टपदी दस वस्तु ले पाछ पावे एक वस्त कारण बिखोट गवावे एक पी न दे दस पी हर ले तौ मूड़ा कहो कहा करे जिस ठाकुर से नाही चारा ताको की जय साध नमस्कारा जाके मन लागा प्रभ मीठा सर्व सुख ताहु मन बूठा जिस जाने अपना हुक्म मनाया सर्व थोक नानक तिन पाया अगंत साहु अपनी देरास खात पीत बरतै आनंद उलास अपनी अमान काश बाहुर साहु ले अज्ञानी मन रोस करे अपनी प्रतीत आप ही खोवे बहुरुष का विश्वास न होवे जिसकी बस्त तिसे आगे रखे प्रभ की आज्ञा मन माथ है उसे चौगन करे निहाल नानक साहिब सदा दयाल अनिक भांत माया के हेत सर पर होवत जान अनेत बिरख की छाया से रंग लावे ओ बिनसै ओ मन पशुतावे जो दिसै सो चलन हार लपट रहे हो तह अंध अंधार बटाऊ स्यों जो लावे नेह ताको हाथ न आवे के मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई कर कृपा नानक आप लय लाई मिथ्या तान तान कुटंब सबाया मिथ्या होमे ममता माया मिथ्या राज जोबन धन माल मिथ्या काम क्रोध बिकराल मिथ्या रथ हस्ती असव बस्त्रा मिथ्या रंग सांग माया पेख हस्ता मिथ्या ध्रुव मोह अभिमान मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान अस थिर भगत साध की सरन नानक जाप जाप जीवै हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुने मिथ्या हस्त पर दर्ब कोहिरै मिथ्या नेत्र पेखत परत्रै रूपाद मिथ्या रसना भोजन अनस्वाद मिथ्या चरण पर विकार को धावै है मिथ्या मन पर लोभ लुभाव है मिथ्या तान नहीं पर उपकारा मिथ्या बासलित बिकारा बिन बूझे मिथ्या सब भये सफल दे नानक हर हर नाम लय बिरथी साकत की आरजा साच बिना कह होवत सूचा बिरथा नाम बिना तन अंध मुख आवत ताके दुर्गंध बिन सिमरन दिन रैन बिरथा बिहाय मेघ बिना ज्यों खेती जाए गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम ज्यों किरपन के नरारथ दाम तान तन ते जन जिह घट बस्यो हर नाउ नानक ताके बल बल जाओ रहत अवर काश अवर कुमावत मन नहीं प्रीत मुखो गंड लावत जानन हर प्रभु प्रबीन बाहर भेक न काहू पहीन अवर उपदेसै आप न करै आवत जावत जन्मै मरै जिसके अंतर बसै निरंकार तिस की सीख तरै संसार
जो तुम भाने तिन

प्रभ जाता नानक उन जान चरण पराता करौ बेनती पार ब्रह्म सब जन अपना किया आपह मन आपह आप करतन बेरा किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा उपाव सियानप सगल ते रहत सब कछ जन आत्म की रहत जिस भावै तिस लय लड़ लाए थान थनंतर रहे आसमाए सो सेवक जिस कृपा करी नेमख नेमख जप नानक हरि सलोक काम क्रोध अर लोभ मो बिन सजाए अहमेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी जिह प्रसाद शति ही अमृत खाहे तिस ठाकुर कौ रख मन माहे जिह प्रसाद सुगंधत तन लावह तिसको सिमरत परम गत पावह जिह प्रसाद बस है सुख मंदर तिस ध्याय सदा मन अंदर जिह प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पहर सिमरहो तिस रसना जिह प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई है त्यावन जोग जिह प्रसाद पाठ पटंबर हंडावै तिस त्याग कत अवर लुभावै जिह प्रसाद सुख सेज सोई जय मन आठ पहर ताका जस गावी जय जिह प्रसाद तुझ सब को मन मुख ताको जस रसन बखानै जिह प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा त्याए केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जपत दरगह मान पावै नानक पत सेती घर जावै जिह प्रसाद आरोग कंचन देही लिवलावो तिस राम स्नेही जिह प्रसाद तेरा ओला रहत मन सुख पावै हर हर जस कहत जिह प्रसाद तेरे सगल छिदर ढाके मन सरणी पर ठाकुर प्रभ ताकै जिह प्रसाद तुझ को ना पहुचै मन सासा सिमरहो प्रभ ऊचे जिह प्रसाद पाई दुर्लभ देह नानक ताकी भगत करे जिह प्रसाद अपूखन पहरी जय मन तिस सिमरत क्यों आलस की जय जिह प्रसाद असव हस्त असवारी मन तिस प्रभ को कबहु ना बिसारी जिह प्रसाद बाग मिलख तना राख पुरवे प्रभ अपने मना जिन तेरी मन बनत बनाई उठत बैठत सद तिसह त्याई तिसह त्याए जो एक अलख है इहा उहा नानक तेरी रख है जिह प्रसाद करह पुन बहुदान मन आठ पहर कर तिसका ध्यान जिह प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभ को सास सास चितारी जिह प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमर रहो सदा अनूप जिह प्रसाद तेरी नीकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात जिह प्रसाद तेरी पात रह गुरु प्रसाद नानक जा सुका है जिह प्रसाद सुनह करन नाद जिह प्रसाद पेख है बिस्माद जे प्रसाद बोले अमृत रसना जे प्रसाद सुख सहजे बसना जे प्रसाद हस्त कर चलै जे प्रसाद संपूर्ण फलै जे प्रसाद परम गत पावै जे प्रसाद सुख सहज समावै ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लाग हो गुरु प्रसाद नानक मन जाग हो जिह प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभ कहो मूल न मनहो बिसार जिह प्रसाद तेरा प्रताप रे मान मूड तू ताको जाप जिह प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिस है जान मन सदा हजूरे जिह प्रसाद तू पावह साच रे मान मेरे तू तास्यो राच जिह प्रसाद सब की गत होए नानक जाप जपाए जाप सोए आप जपाए जपाए सो नाउ आप गावाए सो हर गुण गाओ प्रभु कृपाते होए प्रगास प्रभु दयाते कमल बिगास प्रभ सो प्रसन्न बसै मन सोए प्रभ दयाते मत उत्तम होए सर्ब निधान प्रभ तेरी माया आपो कछु न किन्हू लाया जित जित लावो तित लगै हर नाथ नानक इन कह कछु न हाथ सलोक अगम अगाद पार ब्रह्म सोए जो जो कहे सो मुक्ता होए सुन मीता नानक बिनवंता साध जना की अचरज कथा अष्टपदी साध कै संग मुख उज्जल होत साध संग मल सगली खोत साध कै संग मिटै अभिमान साध कै संग प्रगटै सुज्ञान साध कै संग बुझै प्रभ नेरा साध संग सब होतन बेरा साध कै संग पाए नाम रतन साध कै संग एक ऊपर जतन साध की महिमा बरने कौन प्राणी नानक साध की शोभा प्रभ माहे समानी साध कै संग अगोचर मिलै साध कै संग सदा पर फुलै
साध कै संग आवै बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग होए सब की रेन साध कै संग मनोहर बैन साध कै संग न कतहुं तावै साध संग अस्थित मन पावै साध कै संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभ सुप्रसन्न साध संग दुश्मन सब मीत साधु कै संग महापुनीत साध संग किस्यो नहीं बैर साध कै संग ना बीगा पैर साध कै संग नाही को मंदा साध संग जाने परमानंदा साध कै संग नाही हो ताप साध कै संग तजै सब आप आपे जाने साध बड़ाई नानक साध प्रभु बने आई साध कै संग न कबहूं तावै साध कै संग सदा सुख पावै साध संग बस अगोचर लहै साधु कै संग अजर सहै साध कै संग बसै थान ऊचै साधु कै संग महल पहुचै साध कै संग दृढ़ै सब धर्म साध कै संग केवल पार ब्रह्म साध कै संग पाए नाम निधान नानक साधु कै कुर्बान साध कै संग सब कुल उधारै साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तारै साधु कै संग सो धन पावै जिस धन ते सब को वरसावै साध संग धर्म राय करे सेवा साध कै संग शोभा सुर देवा साधु कै संग पाप पलायन साध संग अमृत गुण गायन साध कै संग सर्ब थान गम नानक साध कै संग सफल जनम साध कै संग नहीं कश काल दर्शन पेटत होत निहाल साध कै संग कलुखत हरै साध कै संग नरक पर हरै साध कै संग इहा उहा सोहेला साध संग बिशरत हर मेला जो इच्छा सोई फल पावै साध कै संग न बिरथा जावै पार ब्रह्म साध रिद बसै नानक उधरै साध सुन रसै साध कै संग सुनो हर नाऊ साध संग हर के गुण गाऊ साध कै संग न मन ते बिसरै साध संग सर पर निस्तरै साध कै संग लगै प्रभ मीठा साधु कै संग घट घट जीठा साध संग पै आज्ञाकारी साध संग गत पई हमारी साध कै संग मिटे सब रोग नानक साध पेटे संजोग साध की महिमा बेद न जानै जेता सुनै तेता बखियानै साध की उपमा ते हुगुण ते दूर साध की उपमा रही भरपूर साध की शोभा का नाही अंत साध की शोभा सदा बेअंत साध की शोभा ऊच ते ऊची साध की शोभा मूच ते मूची साध की शोभा साध बने आई नानक साध प्रभ भेद न पाही सलोक मन साचा मुख साचा सोए आवरण अपेखै एक सबिन कोय नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल अलेप ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख जैसे सूर सर्ब कौ सोख ब्रह्म ज्ञानी कै दृष्ट समान जैसे राज रंक कौ लागै तुल पवान ब्रह्म ज्ञानी कै धीरज एक ज्यों बसदा को खोदै को चंदन लेप ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाऊ नानक ज्यों पावक का सह सुभाव ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागै जला ब्रह्म ज्ञानी कै मन होए प्रगास जैसे धर ऊपर आकाश ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान ब्रह्म ज्ञानी ऊच ते ऊचा मन अपनै है सब ते नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन पए नानक जिन प्रभ आप करे ब्रह्म ज्ञानी सगल कीरीना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया ब्रह्म ज्ञानी ते काश बुरा ना भया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी समाह ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाह ब्रह्म ज्ञानी कै नाही धंधा ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंधा ब्रह्म ज्ञानी कै होए सो भला ब्रह्म ज्ञानी सो फल फला ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार ब्रह्म ज्ञानी कै एकै रंग ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभ संग ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार ब्रह्म ज्ञानी सदा साध जागत ब्रह्म ज्ञानी अहंग बुद्ध त्यागत ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी कै कर सदा आनंद
ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता। ब्रह्म ज्ञानी कह होए अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप, ब्रह्म ज्ञानी का बड प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बाल बाल जाई है। ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आ परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे, ब्रह्म ज्ञानी कह सगल मन माहे। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश। ब्रह्म ज्ञानी का कथया न जाए अध्याख्यर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर। ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी साध जीव नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ। ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी सलोक। कुरतार है जो अंतर नाम, सर्व में पिख है भगवान। निमख निमख ठाकुर नमस्कार है, नानक उहु अपरस सगल निस्तार है। अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस, मन में प्रीत निरंजन दर्श। परत्रय रूप न पिख है नेत्र, साध की टहल संत संग हेत। करन ना सुने काहू की निंदा, सब ते जाने आपस को मंदा। गुरु प्रसाद भिख्या पर हरे, मन की बाशना मन ते तरै। इंद्री जित पंच दुख ते रहत, नानक कूट मध्ये को ऐसा अपरस। बैसनो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न, बिसन की माया ते होए भिन्न। कर्म करत होवे नेह कर्म, तिस बैसनो का निर्मल धर्म। काहू फल की इच्छा नहीं बाचे, केवल भगत कीर्तन संग राचे। मान तान अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल। आप दृढ़ अवराह नाम जपावे, नानक ओ बैसनो परम गत पावे। भगवती भगवंत भगत का रंग, सकल त्याग दुष्ट का संग। मानते बिन सह सगला परम, कर पूजय सगल पार ब्रह्म। साध संग पापा मल खुवे, तिस भगवती की मत उत्तम होवे। भगवंत की टहल करे नितनीत, मान तन अर्पय बिसन परीत। हर के चरण हृदय बसावे, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे। सो पंडित जो मन प्रबोधय, राम नाम आत्म में सोदय। राम नाम सार रस पीवे, उस पंडित कह उपदेश जग जीवै। हर की कथा हृदय बसावे, सो पंडित फिर जो न आवे। वेद पुराण सिमरत बूजे मूल, सूखम में जन असथूल। चौहवरना को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा आदेश। बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चौहवरना में जपे को नाम। जो जो जपे तिसकी गत होए, साध संग पावे जन कोए। कर कृपा अंतर उर तार, पास प्रेत मुगद पाथर कौ तार। सर्व रोग का औखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम। काहू जुगत कित न पाइय धर्म, नानक तिस मिलै जिस लिखिया तुर कर्म। जिसका मन पार ब्रह्म का निवास, तिस का नाम सत रामदास। आत्म राम तिस नदरी आया, दास दसंतन पाए तिन पाया। सदा निकट निकट हर जान, सो दास दरगह प्रवान। अपने दास को आप कृपा करे, तिस दास को सब सो जी पराय। सगल संग आत्म उदास, ऐसी जुगत नानक रामदास। प्रभ की आज्ञा आत्म हितावे, जीवन मुक्त सो कहावे। तैसा हरख तैसा उस सोग, सदा आनंद तह नहीं वियोग। तैसा सुवर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिख खाटी। तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंक तैसा राजान। जो वरताए साई जुगत, नानक ओ पुरख कही है जीवन मुक्त। पार ब्रह्म के सगले ठाओ, जित जित घर राख है। तैसा तिन नाओ आपे करन करावन जोग। प्रभ पावै सोई फुन होग। पसरेओ आप होए अनत तरंग, लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग। जैसी मत दे तैसा प्रगास, पार ब्रह्म करता अभिनाश। सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक पय निहाल। श्लोक उस्तत करहे अनेक जन, अंत न पारावार। नानक रचना प्रभ रची, बहुविध अनक प्रकार। अष्टपदी कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी। कई कोट पय तीर्थवासी, कई कोट बन भ्रमै उदासी।
कई कोट वेद के सर होते, कई कोट तपी सर होते, कई कोट आत्म ध्यान धार है, कई कोट कब का विचार है, कई कोट नव तन नाम त्यावै, नानक करते का अंत न पावै, कई कोट पए अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट किरपन कठोर, कई कोट अभिग आत्म निकोर, कई कोट पर दर्भ को हिरा, कई कोट पर दुख न करै, कई कोट माया शर्म माहे, कई कोट परदेश परमाहे, जित जित लाभ होते तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रास भोगी, कई कोट पंखी सर्प उपाए, कई कोट पाथर बिरख ने पजाए, कई कोट पवन पाणी बैसंत्र, कई कोट देश भू मंडल, कई कोट सस्यर सूर नक्षत्र, कई कोट देव दानव इंद्र सिर शत्र, सकल समग्री अपने सूत तारै, नानक जिस जिस पावै तिस तिस निस तारै, कई कोट राजस तामस सातको, कई कोट वेद पुराण सिमरत अर स्वास्थ, कई कोट किए रतन सुमंद, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट किए चर जीवे, कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे, कई कोट जख्य किन्नर पिशाच, कई कोट भूत प्रेत सूकर मृगाच, सब ते नेरै सब हूं ते दूर, नानक आप अलिपत रहया भरपूर, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुर्ग निवासी, कई कोट जन्मह जीवै मरै, कई कोट बहु जोनी फिरै, कई कोट बैठत ही खाहे, कई कोट कालै थक पाहे, कई कोट किए तनवंत, कई कोट माया मह चिंत, जय जय भाणा तह तह राखे, नानक साब किश प्रभ कै हाथे, कई कोट पहे बैरागी, राम नाम सांग तिन लेव लागी, कई कोट प्रभ को खोजंते, आत्म में पार ब्रह्म लहंते, कई कोट दर्शन प्रप्यास तिनको मिल्यो प्रभ अभिनाश, कई कोट मंग सत संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिनको हुए आप सो प्रसन्न, नानक ते जन सदा धन धन, कई कोट खाणी अर खंड, कई कोट आकाश ब्रह्मांड, कई कोट होए अवतार, कई जुगत किनो बिस्तार, कई बार पसरियो पासार, सदा सदा एक एक ओंकार, कई कोट कीने बहु भांत, प्रभ ते होए प्रभ माहे समात, ताका अंत न जाने कोए, आपे आप नानक प्रभ सोए, कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन होवत आत्म प्रगास, कई कोट तत के बेते सदा निहारै एको नित्रे, कई कोट नाम रस पीवै अमर पय सद सद ही जीवै, कई कोट नाम गुण गावै आत्म रस सुख सहज समावै, अपने जन को सा सा सुमारे, नानक ओए परमेश्वर के प्यारे, सलोक करण कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोए, नानक तिस बलहारण जल थल महियल सोए, अष्टपदी करण करावन करने जोग, ज्योति सुभावै सोई होग, खिन मैं थाप उथापन हारा, अंत नहीं किश पारा वारा, हुक्मे धार अतार रहावै, हुक्मे उपजै हुक्म समावै, हुक्मे ऊच नीच व्यवहार, हुक्मे अनक रंग प्रकार, कर कर देखै अपनी वडियाई, नानक सब मैं रहा समाई, प्रभ भावै मानुख गत पावै, प्रभ भावै तां पाथर तरावै, प्रभ भावै बिन सास ते राखै, प्रभ भावै तां हर गुण भाखै, प्रभ भावै तां पतत उधारै, आप करै आपन बिचारै, दोहा सिरियां का आप स्वामी, खेलै बिकसै अंतर जामी, जो भावै सो कार करावै, नानक दृष्टि अवर न आवै, कहो मानुख ते क्या होए आवै, जो तिस भावै सोई करावै, इसके हाथ होए तां सब की शिले, जो तिस भावै सोई करे, अन जानत बिख्या मैं रचै, जे जानत आपन आप बचै, परमे भूला दैद सतावै, निमख माहे चार कुंट फिर आवै, कर कृपा जिसे अपनी भगत दे, नानक ते जन नाम मिले, खिन मैं नीच कीट कौराज, पार ब्रह्म गरीब निवाज, जा का दृष्ट कछु न आवै, तिस तत्काल दैद स प्रगटावै, जा को अपने करै बख्शीस, ताका लेखा ना गनै जगदीस, जियो पिंड सब तिस की रास, घट घट पूरन ब्रह्म प्रगास, अपनी बणत आप बनाई, नानक जी वै देख बढ़ाई, इसका बल नाही इस हाथ, करण करावन सर्ब को नाथ, आज्ञाकारी बपुरा जियो, जो तिस भावै सोई फोन थियो, कब हूँ ऊंच नीच मैं बसै, कब हूँ सोग हरख रंग हसै, कब हूँ नेंद चिंद व्यवहार, कब हूँ उब आकाश पयाल,
कबहु बेता ब्रह्म विचार, नानक आप मिलावन हार। कबहु निरत करे भव भांत, कबहु सोए रह दिन रात। कबहु महाक्रोध बिकराल, कबहु सर्व की होतरवाल। कबहु होए बह बड़ राजा, कबहु पेखारी नीच का साजा। कबहु आप कीरत मह आवै, कबहु भला भला कहावै। ज्यों प्रभ राखै तिव ही रहै, गुरु प्रसाद नानक सच कहै। कबहु होए पंडित करे बखियान, कबहु मोन तारी लावे ध्यान। कबहु तट तीरथ इसनान, कबहु सिद्ध साधक मुख ज्ञान। कबहु कीट हस्त पतंग होए जिया, अनक जोन भर मैं भरमिया। नाना रूप ज्यों स्वंगी दिखावै, ज्यों प्रभ भावै तिवै नचावै। ज्यो तिस भावै सोई होए, नानक दूजा अवर न कोए। कबहु साध संगत ए पावै, उस अस्थान ते बाहुर न आवै। अंतर हुए ज्ञान प्रगास, उस अस्थान का नहीं विनाश। मान तन नाम रते एक रंग, सदा बसै पार ब्रह्म कै संग। ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। मिट गए गवन पाए बिश्राम, नानक प्रभ कै सद कुरबान। सलोक सुखी बसै मसकीनिया, आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया। नानक गर्भ गले अष्टपदी, जिसका अंतर राज अभिमान। सो नरक पाती होवत सुवान, जो जाने मैं जोवन वंत। सो होवत बिष्टा का जंत, आपस को कर्मवंत कहावै। जन्म मरै बहु जोन परमावै, धन भूमिका जो करै गुमान। सो मूर्ख अंधा ज्ञान, कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावै। नानक इहा मुक्त आगै सुख पावै। धनवंता होए क्या को धनवंता होए, कर गर्भावै तृण समान। काश संग न जावै, बहु लश्कर मान को ऊपर करे आस। पल पीतर ताका होए विनाश, सब ते आप जाने बलवंत। किन में होए जाए पसमंत, किसे न बदे आप अहंकारी। धर्म राय तिस करे खुआरी, गुर प्रसाद जाका मिटाए अभिमान। सो जन नानक दरगह परवान, कोट कर्म करे हों तारे। श्रम पावै सगले बिर थारे, अनक तपस्या करे अहंकार। नरक सुर्ग फिर अवतार, अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवै। हर दरगह कहो कैसे गावै, आपस कहो जो भला कहावै। तिसे भलाई निकट न आवै, सर्व की रेंजा का मन होए। कहो नानक ताकि निर्मल सोए। जब लग जाने मुझ ते कश होए, तब इस को सुख नाही कोई। जब ए जाने मैं किश करता, तब लग गर्भ जून मैं फिरता। जब तारे को बैरी मीत, तब लग नहीं चलना ही चीत। जब लग मोह मगन संग माए, तब लग धर्म राय दे सजाए। प्रभ कृपा ते बंधन टूटै, गुरु प्रसाद नानक हों छूटै। सहस खटे लक को उठता वै, तृपत न आवै माया पाछै पावै। अनक भोग बिख्या की करै, नह तृपता वै खप खप मरै। बिना संतोख नहीं को राजै, सुपर मनोरथ बिरथे सब का जै। नाम रंग सर्व सुख होए, बड़भागी किसै प्राप्त होए। करन करावन आपे आप, सदा सदा नानक हर जाप। करन करावन करने हार, इसके हाथ कहा विचार। जैसी दृष्ट करे तैसा होए, आपे आप प्रभ सोए। ज्यो किश की नो सो अपने रंग, सब ते दूर सब हूं कै संग। बूझै देखै करै बबेक, आपे एक आपे अनेक। मरे न बिन सह आवे न जाए, नानक सद ही रहा समाए। आप उपदेश समझे आप, आपे रचिया सब के साथ। आप कीनो अपन बिस्थार, सब कछ उसका ओ करने हार। उस ते पिन कहो किश होए, थान तनंत्र एक सोए। आप उन्हें चले तो आप करने हार, कौतुक करे रंग अपार। मन मह आप मन अपने माहे, नानक कीमत कह न जाए। सत सत सत प्रभ स्वामी, गुरु प्रसाद किने वख्यानी। सच सच सच सब कीना, कूड़ मधे किने बिरले चीना। भला भला भला तेरा रूप, अत सुंदर अपार अनूप। निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी, घट घट सुनी श्रवण बख्याणी। पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत, नाम जपै नानक मन प्रीत। श्लोक संत सरण जो जन परै, सो जन उदरण हार। संत की निंदा नानका, बहुरु बहुरु अवतार। अष्टपदी, संत कै दुख न आरजा कटै। संत कै दुख न जमते नहीं छुटै। संत कै दुख न सुख सब जाए। संत कै दुख न नरक में पाए। संत कै दुख न मत होए मलीन। संत कै दुख न शोभा ते हीन। संत के हते को रखे न कोए। संत कै दुख न थान भ्रष्ट होए। संत कृपाल कृपा जे करै, नानक संत संग निंदक भी तरै।
संत के दुखन ते मुख पवै, संतन के दुखन काग ज्यों लवै, संतन के दुखन सर्प ज्यों पाए, संत के दुखन तिरगत ज्यों किरमाए, संतन के दुखन तृष्णा मैं जलै, संत के दुखन सब को शलै, संत के दुखन तेज सब जाए, संत के दुखन नीच नीचाए, संत दुखी का थाओ को नाहे, नानक संत पावै ता ओए पी गत पाहे, संत का निंदक महा अतताई, संत का निंदक खिन टिकन न पाई, संत का निंदक महा हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राज तेहीन, संत का निंदक दुखिया हर दीन, संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा बिजोग, संत की निंदा दुख मैं दुख, नानक संत पावे ता उसका पी होए मोख, संत का दुखी सदा अपवित, संत का दुखी किसे का नहीं मित, संत के दुखी को डान लागै, संत के दुखी को सब त्यागै, संत का दुखी महा अहंकारी, संत का दुखी सदा बिकारी, संत का दुखी जन्मै मरै, संत की दुख ना सुख ते टरै, संत के दुखी को नाही ठाऊ, नानक संत पावै ता लय मिलाए, संत का दुखी आद बीच ते टूटै, संत का दुखी कितै काज न पहुँचै, संत के दुखी को उद्यान परमाइयै, संत का दुखी उजड़ पाईयै, संत का दुखी अंतर ते थोथा, ज्यों सास बिना मृतक की लोथा, संत के दुखी की जड़ किश नाहे, अपन बीज आपे ही खाहे, संत के दुखी को अवर न रखन हार, नानक संत पावे ता ले उबार, संत का दुखी इयों बिल लाए, ज्यों जल बिहून मछली तड़फड़ाए, संत का दुखी भूखा नहीं राजे, ज्यों पावक ईधन नहीं तरपै, संत का दुखी छुटे अकेला, ज्यों बुआड़ तिल खेत माहे दोहेला, संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुखी साध मिथ्या कहत, केरत निंदक का तुर ही पया, नानक जो तिस पावै सोई थिया, संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए, संत के दुखी को दरगाह मिले सजाए, संत का दुखी सदा सहकाई है, संत का दुखी ना मराए ना जीवाई है, संत के दुखी की पूजा ना आसा, संत का दुखी उठ चले निराशा, संत कै दुख न त्रष्टै कोए, जैसा पावै तैसा कोई होए, पया किरत न मिटै कोए, नानक जाने सच्चा सोए, सब घट तिसक्यो करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार, प्रभ की उस्तत करो दिन रात, तिसे त्यावहो सास गिरास, सब कछ वरतै तिसका किया, जैसा करे तैसा को थिया, अपना खेल आप करने हार, दूसर कौन कहे बिचार, जिसनु कृपा करे तिस आपन नाम दे, बड़ पागी नानक जन से सलोक, तजो स्यानप सुरजनो सिमरो हर हर राय, एक आस हर मन रखो, नानक दुख परम पहु जाए, अष्टपदी मानुख की टेक वृथी सब जान, देवन को एक है भगवान, जिसके दिए रहे अघाए, बहुर न तृष्णा लगे आए, मारे रख है एक आप, मानुख कह किशना ही हाथ, तिसका हुकम बूझ सुख होए, तिसका नाम रख कंठ परोए, सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, नानक बिक न लागे कोए, उस्तत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत बेवहार, निर्मल रसना अमृत पियो, सदा सुहेला कर लेह जियो, ननो पेख ठाकुर का रंग, साध संग बिन सह सब संग, चरण चलो मार्ग गोबिंद, मिटै पाप जपिए हर बिंद, कर हर कर्म श्रवण हर कथा, हर दरगह नानक उजल मथा, बटभागी ते जन जग माहे, सदा सदा हर के गुण गाहे, राम नाम जो करहे विचार, से तनवंत गनई संसार, मान तान मुख बोले हर मुखी, सदा सदा जानहु ते सुखी, एको एक एक पछाने, एत ओत कियो सो जी जाने, नाम संग जिसका मन मान्या, नानक तिन है निरंजन जानया, गुरप्रसाद अपन आप सुझै, तिसकी जानो तृष्णा बुझै, साध संग हर हर जस कहत, सर्व रोग त्यो हर जन रहत, आन देन कीर्तन केवल बख्यान, ग्रस्त में सोई निर्वाण, एक ऊपर जिस जन की आसा, तिसकी कटिए जम की फासा, पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक तिस न लागै दुख,
जिस कौ हर प्रभ मन चित आवै सो संत सुहेला नहीं डोलावै। जिस प्रभ अपना कृपा करै सो सेवक कहो किस ते डरै। जैसा सा तैसा दृष्टाया अपने कार्य में आप समाया। सोदत सोदत सोदत सीजिया गुरु प्रसाद तत सब बूजिया। जब देखो तब सब किश मूल नानक सो सूखम सोई असथूल। नह किश जन्मै नह किश मरै आपन चलित आप ही करै। आवन जावन दृष्ट आन दृष्ट आज्ञाकारी धारी सब सृष्ट। आपे आप सगल में आप अनेक जुगत राच थाप उथाप। अविनाशी नाही किश खंड तारण तार रहो ब्रह्मांड। अलख अपेव पुरख प्रताप आप जपाए त नानक जाप। जिन प्रभ जाता सुसु बावंत सगल संसार उदरै तिन मंत। प्रभ के सेवक सगल उदाहरण प्रभ के सेवक दुख बिसारण। आपे मेल लय कृपाल गुरु का शब्द जाप पय निहाल। उनकी सेवा सोई लाग गए जिसनु कृपा करै बड भाग गए। नाम जपत पावै विश्राम नानक तिन पुरख को उत्तम करमान। जो किश करै सो प्रभ कै रंग सदा सदा बसै हर संग। सह सुभाए होवै सो होए करने हार पछाणै सोए। प्रभ का किया जन मीठ लगाना जैसा सा तैसा दृष्टाना। जिस ते उपजे तिस माहे समाए ओए सुख निधान उन्हूं बन आए। आप सकौ आप दिनो मान नानक प्रभ जन एको जान। सलोक सर्ब कला भरपूर प्रभ बिरथा जननहार। जाकै सिमरन उदरी है नानक तिस बलहार। अष्टपदी टूटी गांडन हार गोपाल सर्ब जिया आपे प्रतपाल। सगल की चिंता जिस मन माहे तिस ते बिरथा कोई नाहे। रे मन मेरे सदा हर जाप अविनाशी प्रभ आपे आप। आपन किया कशु न होए जे सौ प्राणी लोचै कोए। तिस बिन नाही तेरै किश काम गात नानक जाप एक हर नाम। रूपवंत होए माहि नाही मोह है रूपवंत होए नाही मोह है। प्रभ की जोत सगल काट सो है तनवंता होए। क्या को गर्भै जन सब किश तिस का दिया दरबै। अत सूरा जे को कहावै प्रभ की कला बिना कहतावै। जे को होए बहे दातार तिस दिन हर जाने गवार। जिस गुर प्रसाद तूटे हौ रोग नानक सो जान सदा अरोग। ज्यो मंदर को थामे थमन त्यो गुर का शब्द मने अस थमन। ज्यो पाखाण नाव चढ़ तरै प्राणी गुर चरण लागत निस तरै। ज्यो अंधकार दीपक प्रकाश गुरु दर्शन देख मन होए विगास। ज्यो महा उद्यान मैं मार्ग पावै त्यो साधु संग मिल ज्योत प्रगटावै। तिन संतन की बादशाह तूर नानक की हर लोचा पूर। मन मूर्ख काहे बिल लाइय पुरब लिखे का लिखिया पाइय। दुख सुख प्रभ देवन हार अवर त्याग तू तिसै चितार। जो काशो करै सोई सुख मान भूला काहे फिरै अजान। कौन बस आई तेरे संग लपट रहे ओ रस लोभी पतंग। राम नाम जप हिरदे माहे नानक पत से पी कर जाहे। जिस वखर को लैन तू आया राम नाम संतन कर पाया। ताज अभिमान लेहो मन मोल राम नाम हृदय में तोल। लाद के बसंत है संग चाल अवर त्याग बिख्या जंजाल। धन धन कहे सब कोए मुख उज्जल हर दरगह सोए। एहो वापार विरला वापार है नानक ताकै सद बलहार है। चरण साध के तोए तोए पियो अर्प साध कौ अपना जियो। साध की धूर करहो इशनान साधु प्रजाई है कुर्बान। साध सेवा वड भागी पाई है साध संग हर कीर्तन गाई है। अनक बिघन ते साधु रख है हर गुण गाए अमृत रस चख है। ओट गही संत दर आया सर्व सुख नानक तेह पाया। मेर तक कौ जी वल नहार भूखे को देवत आधार। सर्व निधान जाकी दृष्टि माहे पुरब लिखे का लहना पाहे। सब केश तिस का ओ करने जोग तिस बिंदु सर हुआ न होग। जप जन सदा सदा दिन रहनी सब ते ऊच निर्मल ए करनी। कर कृपा जिसको नाम दिया नानक सो जन निर्मल थिया। जा कै मान गुर की प्रतीत तिस जन आवै हर प्रभ चीत। भगत भगत सुनिए ते हो लोए जाके हृदय एको होए। सच करनी सचता की रहत सच हृदय सत मुख कहत।
साची दृष्ट साचा आकार सच वरतै साचा पासार पार ब्रह्म जिन सच कर जाता नानक सो जान सच समाता श्लोक रूप न रेख न रंग केशो त्रेहो गुण ते प्रभ भिन्न तिसे बुझाए नानका जिस हो वैसो प्रसन्न अष्टपदी अभिनाशी प्रभ मन मै राख मानुख की तू प्रीत त्याग तिसते परे नाही किश कोए सर्व निरंतर एको सोए आपे बिना आपे दाना गहर गंभीर गहीर सो जाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निदान दयाल बख्शंद साध तेरे की चरणे पाओ नानक कै मन एहो अनराओ मन सा पूरन सरना जोग जो कर पाया सोई होग हरन भरन जा का नेत्र फोर तिसका मंत्र न जाने होर आनंद रूप मंगल साद जाकै सर्व थोक सुनिए करता कह राज मै राज जोग मैं जोगी तप मैं तपीसर गृहस्थ मैं भोगी त्याए त्याए भगत सुख पाया नानक तिस पुरख का किने अंत न पाया जाकी लीला की मित नाहे सगल देव हारे अवगाहे पिता का जन्म के जाने पूत सगल पुरोही अपने सूत सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे जन दास नाम ते आवै से तेहो गुण मैं जाको परमाए जन्म मरै फिर आवै जाए ऊच नीच तिसके असथान जैसा जन आवै तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना पेख करै एक रंग नाना बेद कीनो विसथार प्रभ अविनाशी की एक ओंकार नाना बेद कीनो विस्तार प्रभ अविनाशी एक ओंकार नाना चलित करे खिन माहे पूर रहो पूर्ण सब ठाए नाना बेद कर बनत बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब घट तिसके सब तिसके ठाओ जप जप जीवै नानक हर नाओ नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मांड नाम के तारे सिमरत वेद पुराण नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान नाम के तारे आकाश पताल नाम के तारे सगल आकार नाम के तारे पुरियां सब भवन नाम कै संग उधरे सुन श्रवण कर कृपा जिस आपने नाम लाए नानक चौथे पद मै सो जन गत पाए रूप सत जाका सत असथान पुरख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जाकी बाणी सत पुरख सब माहे समाणी सत करम जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करणी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तिसै सब पली सत नाम प्रभ का सुखदाई विश्वास सत नानक गुरु ते पाई सत बचन साधु उपदेश सत ते जन जा कै हृदय प्रवेश सत नरतबु जय जय कोय नाम जप ताकि गत होए आप सत किया सब सत आपे जन अपने मित गत जिसके श्रेष्ठ सो करने हार अवर न बूझ करत विचार करते की मित न जन किया नानक ज्योतिष भावै सो वरतिया बिस्मन बिस्म पै बिस्माद जिन बूझिया तिसाया स्वाद प्रभ कै रंग राच जन रहे गुर कै बचन पदार्थ लहे ओए दाते दुख काटन हार जा कै संग तरै संसार जन का सेवक सो वड भागी जन कै संग एक लिव लागी गुण गोबिंद कीर्तन जन गावै गुर प्रसाद नानक फल पावै श्लोक आद सच जुगाद सच हैपी सच नानक होसी पी सच अष्टपदी चरण सत सत परसनहार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पेखनहार नाम सत सत ध्यावनहार आप सत सत सबतहारी आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रभ बकता सुरत सत सत जस सुनता बुजन हार कौ सत सब होए नानक सत सत प्रभ सोए सत सरूप हृदय जिन मान्या करन करावन तिन मूल पछानिया जाकै हृदय विश्वास प्रभ आया तत ज्ञान तिस मन प्रगटाया भय ते निरपहु होए बसाना जिस ते उपजिया तिस माहे समाना बस्त माहे ले बस्त गडाई ता कौ भिन न कह न जाई बूजै बूजन हार बबेक नारायण मिले नानक एक
ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी, ठाकुर का सेवक सदा पुजारी, ठाकुर के सेवक है मन प्रतीत, ठाकुर के सेवक ही निर्मल रीत, ठाकुर का सेवक जाने संग, प्रभ का सेवक नाम कै रंग, सेवक को प्रभ पालन हारा, सेवक की राखे निरंकारा, सो सेवक जिस दया प्रभ तारे, नानक सो सेवक सास सास मारे, अपने जन का पर्दा ढाक है, अपने सेवक की सर पर राख है, अपने दास को दे वडाई, अपने सेवक को नाम जपाई, अपने सेवक की आप पात राख है, ताकि गात में तो कोई ना लख है, प्रभ के सेवक को ना पहुंचे, प्रभ के सेवक ऊंचे ते ऊंचे, जो प्रभ अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दैदिस प्रगटाया, निकी कीरी मैं काल राख है, भसम कर लस कर कूट लाख है, जिसका सास न काढ़त आप, ताको राखत देकर हाथ, मानस जतन करत बहु पांत, तिसके करत बिरथे जात, मारे न रख अवर न कोय, सर्व जिया का राखा सोए, काहे सोच करहे रे प्राणी, जप नानक प्रभ अलख वेडाणी, बारंबार बार प्रभ जपिया, पी अमृत एहो मन तन तृपिया, नाम रतन जिन गुरमुख पाया, तिस किसे अवर नाही दृष्टाया, नाम तन नामो रूप रंग, नामो सुख हर नाम का संग, नाम रस जो जान त्रिपताने, मन तन नामे नाम सुमाने, उठत बैठत सोवत नाम, कहो नानक जन कै सद काम, बोलो जस जिहबा दिन रात, प्रभ अपने जन की नींदात, करै भगत आत्म कै चाए, प्रभ अपने स्यों रह सुमाए, जो हुआ होवत सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पछाने, तिसकी महिमा कौन बखानो, तिसका गुण कहे एक न जानो, आठ पहर प्रभ बसै हजूरे, कहो नानक सही जन पूरे, मन मेरे तिनकी ओटले, मन तन अपना तिन जान दे, जिन जान अपना प्रभु पछाता, सो जान सर्ब थोक का दाता, तिसकी शरण सर्व सुख पावै, तिसके दर्श सब पाप मिटावै, अवर स्यान पसगली शाड़, तिस जन की तू सेवा लाग, आवन जान होवी तेरा, नानक तिस जन के पूजो सद पैरा सलोक, सत पुरख जिन जानिया, सतगुरु तिसका नाउ, तिसकै संग सिख उदरै, नानक हर गुण गाओ अष्टपदी, सतगुरु सिख की करै प्रतपाल, सेवक को गुरु सदा दयाल, सिख की गुर दुरमत मल हिरै, गुर बचनी हर नाम उचरै, सतगुर सिख के बंधन काटै, गुर का सिख बेकार ते हटै, सत गुर सिख को नाम धन दे, गुर का सिख वडभागी हे, सतगुर सिख का हलत पलत सवारै, नानक सतगुर सिख को जी नाल समारै, गुर कै गृह सेवक जो रहै, गुर की आज्ञा मन में सहै, आपस को करकश न जनावै, हर हर नाम हृदय सद त्यावै, मन बेचै सतगुर के पास, तिस सेवक के कार्य रास, सेवा करत हुए ने कामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी, अपनी कृपा जिस आप करे, नानक सो सेवक गुर की मत ले, बीस बिसवे गुर का मन मानै, सो सेवक परमेश्वर की गात जानै, सो सत गुर जिस हृदय हर नाउ, अनक बार गुर को बल जाओ, सर्ब निधान जी का दाता, आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता, ब्रह्म मह जान जन मह पार ब्रह्म, एक है आप नहीं कश परम, सह सियानप लाया न जाइए, नानक ऐसा गुर बड़ भागी पाइए, सफल दर्शन पेखत पुनीत, पर सत चरण गत निर्मल रीत, भेटत संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दरगा गवे, सुन कर बचन करण आघाने, मन संतोख आत्म पतियाने, पूरा गुर अखियो जाका मंत्र, अमृत दृष्ट पेखै होए संत, गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस पावै तिस लय मिलाए, जिहबा एक उस्तत अनेक, सत पुरख पूरन बबेक, काहू बोल न पहुचत प्राणी, अगम अगोचर प्रभ निर्बानी, निराहार निर्वैर सुखदाई, ताकि कीमत किने न पाई, अनक भगत बंधन नित करै, चरण कमल हृदय सिमरै, साध बलहारी सत गुर अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने, ए हर रस पावे जन कोए, अमृत पीवे अमर सो होए, उस पुरख का नाही कदे विनाश, जाके मन प्रगटे गुणतास,
आठ पैर हर का नाम ले, साच उपदेश सेवक कौ दे, मोह माया के संग न लेप, मन में राख हर हर एक, अंधकार दीपक प्रगासे, नानक भरम मोह दुख तै तिनासे। तपत माहे ठाण वरताई, आनंद पहया दुख न ठे पहाई, जन्म मरण के मिटे अंदेसे, साधु के पूर्ण उपदेसे, पाओ चुका निरपाओ होए बसे, सगल ब्याद मन ते खै नसे, जिसका सा तिन कृपा तारी, साध संग जप नाम मुरारी, थेत पाई चुके भ्रम गवन, सुन नानक हर हर जस श्रवन, निर्गुण आप सरगुण पी ओही, कला धार जिन सगली मोही, अपने चरित प्रभ आप बनाए, अपनी कीमत आपे पाए, हर बिन दूजा नाही कोए, सर बिन निरंतर एको सोए, ओत पोत रव्या रूप रंग, भय प्रगास साध कै संग, रच रचना अपनी कल तहरी, अनक बार नानक बलहारी, श्लोक साथ न चालै बिन भजन, बिख्या सगली शार, हर हर नाम कमावना नानक एहो धन सार, अष्टपदी संत जना मिल करो विचार, एक सिमर नाम आधार, अवर उपाव सब मीत बिसारो, चरण कमल रिद में उर तहारो, करण कारण सो प्रभ समरथ, दृढ़ कर गहो नाम हरवथ, एहो धन संचो हो वो भगवंत, संत जना कर निर्मल मंत, एक आस राखो मन माहे, सर्ब रोग नानक मिट जाहे। जिस धन कौ चार कुंट उठता वै, सो धन हर सेवा ते पावै, जिस सुख कौ नित बाछै मीत, सो सुख साधु संग परीत, जिस सोभा को करह भली करनी, सा सोभा भज हर की सरनी, अनको पावी रोग न जाए, रोग मिटै हर अवखद लाए, सर्व निधान मैं हर नाम निधान, जप नानक दरगह परवान, मन प्रभु दौ हर कै नाए, दैद सुभाव ते आवै ठाए, ताको बेगन न लागै कोए, जाकै हृदय बसै हर सोए, कल ताती ठंडा हर नाउ, सिमर सिमर सदा सुख पाओ, पाओ बिनसै पूरन होए आस, भगत पाए आत्म प्रगास, तित घर जाए बसै अबिनासी, कहो नानक काटी जम फासी, तत विचार कहे जन साचा, जन मरै सो काचो काचा, आवागवन मिटै प्रभ सेव, आप त्याग शरण गुरुदेव, एव रतन जन्म का होए उदार, हर हर सिमर प्राण आधार, अब अनको पावना छूटन हारे, सिमरत शास्त्र वेद विचारे, हर की भगत करो मन लाए, मन बंशत नानक फल पाए, संग न चाल स्थिर तना तू क्या लपटावा है मूर्ख मना, सोत मीत कुटंब अर बनता, इन ते कहो तुम कवन सनाथा, राज रंग माया बिस्थार, इन ते कहो कवन छुटकार, अस हस्ती रथ अस वारी, झूठा डंफ झूठ पासारी, जिन दिए तिस बुझे ना बेगाना, नाम बिसार नानक पशुताना, गुर की मत तू ले आने, भगत बिना बोडू बेस्याने, हर की भगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो चीत, चरण कमल राखू मन माहे, जन्म जन्म के किल बिख जाहे, आप जपहो अवरा नाम जपा वाहो, सुनत कहत रहत गत पा वाहो, सार भूत सत हर को नाओ, सह सुभाए नानक गुण गाओ, गुण गावत तेरी उतरस मैल, बिन सजाए होमे बिख फैल, होहे अचिंत बसै सुख नाल, सास ग्रास हर नाम समाल, शाड़ सियाण पसगली मना, साध संग पावै सच तना, हर पूंजी सांच करो व्यवहार, इहां सुख दरगै जयकार, सर्ब निरंतर एको देख, कहो नानक जाके मस्तक लेख, एको जप एको सलाहे, एक सिमर एको मन आहे, एक सके गुण गाओ अनंत, मंतन जाप एक भगवंत, एको एक एक हर आप, पूर्ण पूर रहो प्रभ आप, अनेक बिस्थार एक ते पहे, एक आराध प्राशत गए, मान तन अंतर एक प्रभ राता, गुर प्रसाद नानक एक जाता, सलोक फिरत फिरत प्रभ आया, परया तो शरणाए, नानक की प्रभ बेनती, अपनी भक्ति लाए, अष्टपदी जाचक जन जाचे प्रभ दान, कर कृपा देवहो हर नाम, साध जना की मांगो तूर, पार ब्रह्म मेरी सरदा पूर, सदा सदा प्रभ के गुण गावो, सास सास प्रभ तुम्हें ते आवाओ,
चरण कमल सिउ लागै प्रीत, भगत करहु प्रभ की नित नीत, एक ओठ एको आधार, नानक मंगै नाम प्रभ सार। प्रभ की दृष्ट महा सुख होए, हर रस पावै बिरला कोई, जिन चाखिया से जान त्रिपताने, पूरन पुरख नहीं डोलाने, सुपर परे प्रेम रस रंग, उपजै चाउ साधक संग, परे सरन आन सब त्याग, अंतर प्रगास आन दिन लिव लाग, बडभागी जपया प्रभ सोए, नानक नाम रते सुख होए। सेवक की मनसा पूरी पही, सतगुरु ते निर्मल मत लई, जन को प्रभ होयो दयाल, सेवक कीनो सदा निहाल, बंधन काट मुकत जन पया, जन्म मरण दुख भ्रम गया, इश पुनी श्रद्धा सब पूरी, रव रहया सद संग हजूरी, जिस का सा तिन लिया मिलाए, नानक भगती नाम समाए। सो क्यों बिसरै जे काल ना पानै, सो क्यों बिसरै जे किया जानै, सो क्यों बिसरै जिन सब किश दिया, सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया, सो क्यों बिसरै जे अगन में राखै, गुर प्रसाद को बिरला लाखै, सो क्यों बिसरै जे बिखते काटै, जन्म जन्म का टूटा गांडै, गुर पूरै तत एह बुझाया, प्रभ अपना नानक जन त्याया, साजन संत करो ए काम, आन त्याग जप हो हर नाम, सिमर सिमर सिमर सुख पावहो, आप जपहो अवरह नाम जपावहो, भगत पाए तरिय संसार, बिन भगती तन होसी शार, सर्ब कल्याण सुख निद नाम, बूढ़त जात पाए बिसराम, सगल दुख का होवत नास, नानक नाम जपो गुणतास। उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ, मन तन अंतर एही सुआओ, नेत्रों पेख दरस सुख होए, मन बिगसै साध चरण धोए, भगत जना कै मंतन रंग, बिरला को पावै संग, एक बस्त दीजै करमया, गुर प्रसाद नाम जप लया, ताकि उपमा कही न जाए, नानक रहया सर्व समाए, प्रभक्षण दीन दयाल, भगत वशल सदा कृपाल, अनाथ नाथ गोविंद गोपाल, सर्वकटा करत प्रतपाल, आदि पुरुख कारण करतार, भगत जना के प्राण आधार, जो जो जपै सो होए पुनीत, भगत पाए लावै मन हीत।

सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन बिसराम। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

मुद्रा दूर कथ न कथि न आवे टूट। कथ कथ कथी कोटि कोट कोट दे दा दे लै दे तक पाही जुगा जुगंतर खाही खाही हुक्मे हुक्म चलाए राहु। नानक विगसै बेपरवाहु साचा साहिब साच नाय भाखिया भाउ अपार आख है मंग है देहि दे दात करे दातार फेर के अग्गै रखिए चित दिसै दरबार मुहाओ के बोलन बोलिए चित सुन धरे प्यार। अमृत वेला सच नाउ वड्याई विचार करमी आवे कपड़ा नदरी मुख द्वार नानक एवै जानिए सब आपे सुचियार।

सो दर केहा, सो घर केहा, जित वहसर संभाले। वाजे नाद अनेक संखा केते वावन हारे, केते राग परी स्यो कहियन केते गावन हारे। गावह तोहनु पौन पानी बैसंतर, गावह राजा धर्म दुआरे। गावह चित गुप्त लिख जान है, लिख लिख धर्म विचारे। गावह ईसर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सुवारे। गावह इंद्रदासन बैठे देवते आदर नाले, गावह सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे। गावन जति सती संतोखी, गावह वीर करारे। गावन पंडित पढ़न रखी सर, जुग जुग वेदा नाले। गावह मोहनिया मन मोहन, सुरगा मच पयाले। गावन रतन उपाए तेरे, अड़सठ तीर्थ नाले। गावह जोत महाबल सूरा, गावह खानी चारे। गावह गावह खंड मंडल वर भंडा, कर कर रखे तारे। श्री तुदनो गाव है जो तुद पावन, रते तेरे भगत रसाले। होर किते गावन से मैं चित न आवन, नानक क्या विचारे। सोई सोई सदा सच साहिब, साचा साची नाई। है भी होसी जाए न जासी, रचना जिन रचाई। रंगी रंगी भाती कर कर जिनसी, माया जिनु पाई। कर कर वेखे कीता आपना, जिव तिस दी वड्याई। जो तिस भावै सोई करसी, हुक्म न करना जाय। सो पात साहो साहा पात साहिब, नानक रहन रजाय। मुंदा संतोख सरम पत झोली, ध्यान की करह बिभूत। किंता काल कुआरी काया, जुगत डंडा प्रतीत। आई पंथी सगल जमाती, मन जीतै जगजीत। आदेश तिसै आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुगे कुवेश। भुगत गया दया भंडारण, कट कट वाजह नाद। आप नाथ नाथी सब जाकी, रिद सद अवरा साध। संजोग विजोग द्विकार चलावै, लिखे आवह भाग। आदेश तिसै आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एक कुवेश। एका माई जुगत व्याई, तिन चेले परवान। एक संसारी एक भंडारी, एक लाए दीवान। जिव तिस भावै तिवै चलावै, जिव होवै फरमान। ओ वेखै ओना नदर नावै, बहुता इहो विडान। आदेश तिसै आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एक वेश। आसन लो

पर आदेश तिशय आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एक वेश एक दू जी भाव लक होए लक हो वह लक वीश लख लख गेड़ाया की यह एक नाम जगदीश एत राह पत पवड़िया चढ़ी है हुए कीस सुन गल्ला आकाश की किटाया इरीश नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़े ठीस आखन जोर चुपै नह जोर जो न मंगण दे न जोर जो न जीवन मर नह जोर जो न राज माल मनसूर जो न सुरती ज्ञान विचार जो न जुक्ति छुट्टे संसार जिस हत जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच न कोए राती रुती थिती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी हुए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवार नदरी करम पवै निशान कच पकाई उथे पाए नानक गया जापै जाय धर्म कांड का

महेश किते बर में काढ़त कड़िय है रूप रंग के वेश केतिया करम भूमि मेर केते केते धूप देश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश केते देवदान मुन केते केते रतन समुंद केतिया खानी केतिया वाणी केते पात नरेंद केतिया सुरती सेव केते नानक अंत न अंत ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड तिथै नाद विनोद कोड आनंद शर्म खंड की बाणी रूप तिथै काढ़त घड़िए बहुत अनूप ताकिया गल्ला कतिया ना जाए जे को कह पिछे पछताए तिथै घड़िए सुरत मत मन बुद्ध तिथै घड़िए सुरा सिद्धा की शुद्ध कर्म खंड की बाणी जोर तिथै होर न कोई होर तिथै जोत महाबल सूर तिन मह राम रहया भारपूर तिथै सीतो सीता महमा माहि ताकि रूप न कथने जाहि ना ओहि मरहि न ठागे जाहि जिनकै राम वसै मन माहि तिथै भगत वसै के लोह करह अनंत सच्चा मन सोई सच खंड वसै निरंकार कर कर वेखै नजर निहाल तिथै खंड मंडल वर भंड जे को कथै तंत नंत तिथै लो लो आकार जिव जिव हुकुम तिवै तिवकार विखै विगसै कर विचार नानक कथना करड़ा सार जत पहारा तीर सुनियार अहरन मत वेद हथियार पाओ खलागन तपताओ भांडा पाओ मृत ढाल घड़िय सब सच्ची टकसार जिनको नदर कर्म तिनकार नानक न...

ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਾਪ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ, ਚਪੈ ਚੰਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਵਰਣ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜਿਹੇ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਭੇਖ, ਕੋ ਕਹਿ ਨ ਸਕਤ ਕਿਹੇ। ਅਚਲ ਮੂਰਤ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਮਿਤੋਜ ਕਹਿਜੈ ਕੋਟ ਇੰਦ੍ਰ ਇੰਦ੍ਰਾਣ, ਸਾਹੀ ਸਾਹਾਣ ਗਨਿਜੈ, ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਮਹੀਪ ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ, ਨੇਤ ਨੇਤ ਬਣ ਤ੍ਰਿਣ ਕਹਿਤ, ਤਵੈ ਸਰਵ ਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਨ, ਕਰਮ ਨਾਮ ਬਰਨਤ ਸੁਮਤ, ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆ ਚੰਦ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਕਾਲੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਕਿਰਪਾਲੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਰੂਪੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਨੂਪੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਭੇਖੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਲੇਖੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਕਾਏ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਜਾਏ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਗੰਜੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਪੰਜੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਨਾਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਠਾਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਕਰਮੰਗ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਧਰਮੰਗ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਨਾਮੰਗ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਧਾਮੰਗ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਜੀਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਭੀਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਬਾਹੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਟਾ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਬਾਹੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਟਾਹੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਜੀਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਭੀਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਬਾਹੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਟਾਹੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨੀਲੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਾਦੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਛੇਦੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਗਾਦੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਗੰਜੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਭੰਜੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਉਦਾਰੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਪਾਰੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਸੁਏਕੈ, ਨਮਸਤੰਗ ਨੀਕੈ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਭੂਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਜੂਪੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਕਰਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਭਰਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਦੇਸ਼ੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਭੇਸੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਨਾਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਕਾਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਦਾਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਗਾਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਧੂਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਭੂਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਲੋਕੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਸੋਕੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਤਾਪੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਥਾਪੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਤ੍ਰਿਮਾਨੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਧਾਨੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਗਾਹੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਬਾਹੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਤ੍ਰਿਵਰਗੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਸਰਗੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਪ੍ਰਭੋਗੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਸੁਜੋਗੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਰੰਗੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਭੰਗੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਗੰਮੇ, ਨਮਸਤਸਤਰੰਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਜਲਾਸਰੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਾਸਰੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਜਾਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਪਾਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਮਜਬੇ, ਨਮਸਤਸਤਜਬੇ, ਅਦੇਸੰਗ ਅਦੇਸੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਭੇਸੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਧਾਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਵਾਮੇ, ਨਮੋ ਸਰਵ ਕਾਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਵ ਦਿਆਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਵ ਰੂਪੇ, ਨਮੋ ਸਰਵ ਭੂਪੇ, ਨਮੋ ਸਰਵ ਖਾਪੇ, ਨਮੋ ਸਰਵ ਤਾਪੇ, ਨਮੋ ਸਰਵ ਕਾਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਵ ਪਾਲੇ, ਨਮਸਤਸਤ ਦੇਵੈ, ਨਮਸਤੰਗ ਭੇਵੈ, ਨਮਸਤੰਗ ਜਨਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਸੁਬਨਮੇ, ਨਮੋ ਸਰਵ ਗੌਣੇ, ਨਮੋ ਸਰਵ ਭੌਣੇ, ਨਮੋ ਸਰਵ ਰੰਗੇ, ਨਮੋ ਸਰਵ ਭੰਗੇ, ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ, ਨਮਸਤਸ ਦਿਆਲੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਵਰਣੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਮਰਣੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਜਰਾਰੰਗ, ਨਮਸਤੰਗ ਕਿਰਦਾਰੰਗ, ਨਮੋ ਸਰਵ ਧੰਦੇ, ਨਮੋ ਸਤ ਬੰਦੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਸਾਕੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਵਾਕੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਰਹੀਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਕਰੀਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਨੰਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਮਹੰਤੇ, ਨਮਸਤਸਤ ਰਾਗੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਸੁਹਾਗੇ, ਨਮੋ ਸਰਵ ਸੋਖੰਗ, ਨਮੋ ਸਰਵ ਪੋਖੰਗ, ਨਮੋ ਸਰਵ ਕਰਤਾ, ਨਮੋ ਸਰਵ ਹਰਤਾ, ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇ, ਨਮੋ ਭੋਗ ਭੋਗੇ, ਨਮੋ ਸਰਵ ਦਿਆਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਵ ਪਾਲੇ, ਚਾਚਰੀ ਚੰਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਅਰੂਪ ਹੈ ਅਨੂਪ ਹੈ ਅਜੂ ਹੈ ਅਭੂ ਹੈ ਅਲੇਖ ਹੈ ਅਭੇਖ ਹੈ ਅਨਾਮ ਹੈ ਅਕਾਮ ਹੈ ਅਦੇਹ ਹੈ ਅਭੇ ਹੈ ਅਜੀਤ ਹੈ ਅਭੀਤ ਹੈ ਤ੍ਰਿਮਾਨ ਹੈ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਤ੍ਰਿਵਰਗ ਹੈ ਸਵਰਗ ਹੈ ਅਨੀਲ ਹੈ ਅਨਾਦ ਹੈ ਅਜੇ ਹੈ ਅਜਾਦ ਹੈ ਅਜਨਮ ਹੈ ਅਵਰਣ ਹੈ ਅਭੂਤ ਹੈ ਅਭਰਨ ਹੈ ਅਗੰਜ ਹੈ ਅਭੰਜ ਹੈ ਅਚੂਜ ਹੈ ਅਝੰਜ ਹੈ ਅਮੀਕ ਹੈ ਰਫੀਕ ਹੈ ਅਧੰਧ ਹੈ ਅਬੰਦ ਹੈ ਨਿਰਭੂਜ ਹੈ ਅਸੂਜ ਹੈ ਅਕਾਲ ਹੈ ਅਜਾਲ ਹੈ ਅਲਾਹ ਹੈ ਅਜਾ ਹੈ ਅਨੰਤ ਹੈ ਮਹੰਤ ਹੈ ਅਲੀਕ ਹੈ ਨਰਸੀਕ ਹੈ ਨਿਰਲੰਬ ਹੈ ਅਸੰਭ ਹੈ ਅਗਮ ਹੈ ਅਜਮ ਹੈ ਅਭੂਤ ਹੈ ਅਛੂਤ ਹੈ ਅਲੋਕ ਹੈ ਅਸੋਕ ਹੈ ਅਕਰਮ ਹੈ ਅਭਰਮ ਹੈ ਅਜੀਤ ਹੈ ਅਭੀਤ ਹੈ ਅਬਾਹ ਹੈ ਅਗਾਹ ਹੈ ਅਮਾਨ ਹੈ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਅਨੇਕ ਹੈ ਫਿਰ ਏਕ ਹੈ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆ ਚੰਦ ਨਮੋ ਸਰਬਮਾਨੇ ਸਮਸਤੀ ਨਿਧਾਨੇ ਨਮੋ ਦੇਵ ਦੇਵੇ ਅਭੇਖੀ ਅਭੇਵੇ ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਪਾਲੇ
नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे अनंगी अनाथे नृसंगी परमाते नमो पान पाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत्य नृत्य नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ती स्वरूपे परपंगी परमाथे समस्ती बेपुते कलंकंग बिनाने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजेश्वर परम रूपे नमो जोग जोगेश्वर परम सिद्धे नमो राज राजेश्वर परम वृद्धे नमो शस्त्रपाणे नमो अस्त्रमाणे नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता अपेखी अपरमी अपोगी अपुगते नमो जुग जुगेश्वर परम जुगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रे देवी सुधर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साह साहंग नमो पूप पूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तंग स्नानंग नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्रंग नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सच्चिदानंद सर्वं परनाशी अरूपे अनूपे समस्तुल निवासी सदा सिद्धदा बुद्धदा वृद्धकर्ता अदो उर्ध अर्धंग अगंग उगहर्ता परम परम परमेश्वरं प्रोचपालं सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालंग अछेदी अभेदी अनामं अकामं समस्तोपराजी समस्तस्ततामं तेरा जोर चाचरी चांद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपेय हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेश हैं पुजंग प्रयाचंद अगाधे अबाधे अनंदी स्वरूपे नमो सर्वमानी समस्ती निदाने नमस्तुंग निर्णाते नमस्तुंग परमाते नमस्तुंग गंजे नमस्तुंग पंजे नमस्तुंग काले नमस्तुंग पाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो महामाहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो सोख सोखे नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतंग नमो सर्व ज्ञानंग नमो परम तानंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व जंत्रंग नमो सर्व दृश्यंग नमो सर्व कृष्ण नमो सर्व रंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तंग प्रसिजे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं परनासी सदा सर्वदा हृदय सिद्धं निवासी चरपट चंत्व प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मंग अलख कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग भुगता सर्वंग जुगता सर्वंग देवंग सर्वंग पेवंग सर्वंग काले सर्वंग पाले रुवाल चंत्व प्रसाद आद रूप अनाद मूर्त जौन पुरख पार सर्वान त्रिमान देव पेवाद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व को पुनकाल जतर तत्र विराज ही अवतूत रूप रिसाल नाम ठामना जात जाकर रूप रंग नारेख आदि पुरकुदार मूर्त अजौन आदेश देश और न पेश जाकर रूप रेख न राग जतर तत्र दिशा विशा हुए फैलो अनुराग नाम काम बहीन पेख ताम नह जाहि सर्व मान सर्वत्र मान सुदय मान सुताहि एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेल अनंत को फिर एक देव पेव न जा नहीं जे बेद और कतेब रूप रंग न जात पास हो जाने के जेब तात मात न जात जाकर जन्म मरण बहीन चक्र बकर फिर चतुर चक माने पुरतीन लोग चौदह के बिखै जग जापी जे जाप हुआ देवनाद मूर्था प्यो सब जे था परम रूप नीत मूर्त पूर्ण पूर्ख अपार सर्व विश्व रचियो स्वयं पव गण भंजन हार कालहीन कला संयुक्त काल पुरख देश धर्म धाम सु परम रहत भूत लाका पेश अंग राग न रंग जाके जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुख दाय काम आप रूप अमेक अनुस्त एक पुरखूत गर्भ गंजन सर्व भंजनाद रूप सूत अंगीन भंग नातम एक पुरख पार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्व गंता सर्व हंता सर्व तेन पे एक सर्व शास्त्र न जानही जे रूप रंग रेख परम वेद प्राण जा कह नेत भक्त नित कोट सिमृत
प्राण शास्त्र नया वही वचित मद पार चंत्व प्रसाद गुणगन उदार महिमा पार असन भंग उपमा नंगन पो प्रकाश निस्तिन आसा जान बाहु साहन साहु राजान राजपानन पान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालन बाल रंकान रंकालन काल अनभूतांगा बापांगत मित अपार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निर्भय निकाम अद्भुत प्रचंड मित गत अखंड आलिश्य कर्मा दृश्य धर्म सर्वा परना डंड वाड्याचा श्री चंत्व प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंग करियंग निर्नामे अकामे पुजंग प्रयाचंद चतुर चक्र कर्ता चतुर चक्र हरता चतुर चक्र दानी चतुर चक्र जानी चतुर चक्र वर्ती चतुर चक्र परती चतुर चक्र पाले चतुर चक्र काले चतुर चक्र पासे चतुर चक्र वासे चतुर चक्र मान्य चतुर चक्र दान्य चाचरी चांदन सत्रह न मित्रह न परमंग न पित्रह न कर्मंग न काय न कर्मंग न काय अजन्मंग जाय न चित्रह न मित्र परे है पवित्र प्रतिशय अधिशय अदृश्य कृशय भगवती चंत्व प्रसाद कथते किया चिज देश किया भिज पेशय किया गंज कर्म किया भंज भरम किया भिज लोक किया तित सुख के भूत बरण के बेभूत करण कि राजं प्रभा है कि धर्मं तुजा है कि अशोक है कि अशोक वर्ण है कि सर्वा भरण है कि जगतं कृति है कि छत्रं छत्रे कि वर्मं स्वरूप है कि अनुभव अनूप है कि आद अदेव है कि अपेव है कि चित्रं वहीन है कि कै अधीन है कि रुजी रिजा कह रही मैं रिहा कह के पाक बे है कि गैबुल गैब है कि फुल गुनाह है कि साहन साह है कि कारण कुनिंद है कि रुजी देहांद है कि राजक रहीम है कि कर्मं करीम है कि सर्वं कली है कि सर्वं दली है कि सर्वत्र मान्य है कि सर्वत्र दान्य है कि सर्वत्र गौण है कि सर्वत्र पौण है कि सर्वत्र दिश है कि सर्वत्र पेश है कि सर्वत्र राज्य है कि सर्वत्र साज्य है कि सर्वत्र दीन है कि सर्वत्र लीन है कि सर्वत्र जाहु कि सर्वत्र पाहु कि सर्वत्र दिश है कि सर्वत्र पेश है कि सर्वत्र काल है कि सर्वत्र पाल है कि सर्वत्र हंता कि सर्वत्र गंता कि सर्वत्र पेखी कि सर्वत्र पेखी कि सर्वत्र काजय कि सर्वत्र साजय कि सर्वत्र काजय कि सर्वत्र राजय कि सर्वत्र सुख है कि सर्वत्र भूख है कि सर्वत्र त्राण है कि सर्वत्र प्राण है कि सर्वत्र दिश है कि सर्वत्र पेश है कि सर्वत्र मान्य सदैव प्रधान्य कि सर्वत्र जाप्य है कि सर्वत्र थाप्य है कि सर्वत्र पान है कि सर्वत्र मान है कि सर्वत्र इंद्र है कि सर्वत्र चंद्र है कि सर्वं कली कि सर्वं कली मैं कि परम फही मैं कि आकल अलाम मैं कि साहिब कलाम मैं कि हुस्नल वजू है तो मामुल रजू है हमेशल सलाम है सलीकत मुदा में गनीमुल शिकस्त है गरीबुल परस्त है बिलंदुल मकान है जमीनुल जमान है तमीजुल तमाम है रुजुअल निदान है हरीफुल अजीम है रजा की यकीन है अनेकुल तरंग है अपीद है अपंग है अजीजुल निवाज है गनीमुल खिराज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुक्त प्रभा है सुजुक्त सुधा है सुदैव स्वरूप है अपेदी अनूप है समस्तो पराज है सदा सर्वसाज है समस्तुल सलाम है सदैव लकाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है अंगाध रूप है अनाध स्वरूप है अनंगी अनामी त्रिभंगी त्रिकामी त्रिवर्गं त्रिबाधे अगंजे अगाधे सुभंग सर्वभागे सुसर्वा अनुरागे त्रिभुगत स्वरूप है अचिज है अछूत है कि नरकंग प्रणास है पृथ्वल प्रवास है निरुक्त प्रभा है सुदैवं सदा है बेपुगत स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है निरुक्त सदा है बेपुगत प्रभा है अनुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है चाचरी चंद अपंग है अनंग है अपेख है अलेख है अपरम है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अपूत है अतूत है अनास है उदास है अतंध है अबंध है अभगत है विरक्त है अनास है प्रकाश है निचिंत है सुनित है अलिख है अधिक है अलेख है अपेख है अटा है अगा है असंभ है अगम है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजाद है चरपट चंत्व प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग गंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग हर्ता सर्वंग कर्ता सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं सर्वंग कर्मं सर्वंग धर्मं सर्वंग युक्ता सर्वंग मुक्ता रसावल चंत्व प्रसाद नमो नरक नासे सदैवं प्रकाशे
अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमात्म परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे नृपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पुत्रे न पुत्रे न सत्रे न मित्रे न ताते न माते न जाते न पाते निरसाकं सरीकं अमितो अमीकं सदैवं प्रभाहे अजय है अजाहे भगवती चंत्व प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजिर हजूर है हमेशुल सलाम है समस्तुल कलाम है के साहिब दिमाग है के हुस्नुल चिराग है के कामल करीम है के राजक रहीम है के रोजी देहांद है के राजक रहिंद है करीमुल कमाल है के हुस्नुल जमाल है गनीमुल किराज है गरीबुल निवाज है हरिपुल सिकन है हिरासुल फिकन है कलंकं परनाश है समस्तुल निवास है अगंजुल गनीम है रजायक रहीम है समस्तुल जुबा है के साहिब किरा है के नरकंग परनाश है बहस्तुल निवास है के सर्वल गवन है हमेशल रवन है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परम परमीश है समस्तुल अधीश है अदेशुल अलेख है हमेशुल अपेक है जमीनुल जमा है अमीकुल इमा है करीमुल कमाल है के जुरत जमाल है के अचलंग प्रकाश है के मितो सुभाष है के अजब स्वरूप है के मितो विभूत है के अमितो पसा है के आत्म प्रभा है के अचलंग अनंग है के मितो अपंग है मद पार चंद त्व प्रसाद मुन मन प्रणाम गुणगन मुदाम अरवर अगंज हर नर परपंज अनगन प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बरनर अमंड अनपव अनाश मुन मन प्रकाश गुणगन प्रणाम जल थल मुदाम अंशिज अंग असुन अपंग उपमा पार गत मित उदार जल थल अमंड दिशुष अपंड जल थल महंत दिशुष बेअंत अनपवनास त्रेतर तुरास आजान बाहु एक सदाहु ओंकाराद कथनी अनाथ खलखंड खयाल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अनछिज गात आजिज न बात अनचंज गात अनरंज बात अनटुट पंडार अनडट अपार आडीठ धर्म अतटीठ कर्म अनवरण अनंत दाता महंत हर बोल मना चंत्व प्रसाद करुणालय है अरकालय है कलखंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्ववारण है त्रित के तरण है जग के करण मन मान्य है जग जान्य है सर्वंग पर है सर्वंकर है सर्वपाश्य है सर्वनाश्य है करुणा कर है विश्वम पर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंड से कलखंड से परते पर है करुणा कर है जपा जप है तपा तप है अकृता कृत्य अमृता अमृत अमृता अमृत करुणा कृत्य कृता कृत्य धरणी त्रित अमितेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृत्य अमृता अमृत जबा कृत्य अमृता अमृत निर्नायक है कलकायक है विश्वम्पर है करुणालय है नृपनायक है सर्पायक है पावभंजन है अरगंजन है रिपतापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हरता हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जस के जस है पुजंग प्रयाचंद नमो सूर्य सूर्ये नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो रासंग तामसंग सात रूपे नमो परम तत्तंग तत्तंग स्वरूपे नमो जुग जुगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलय कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंग विभूते अलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आशासे नमो बांक बंके अभंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे कचरी छंद अजय अलय अभय अभय अपू अजू अनाश अकाश अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम काम गाह अटाह अनाथे परमाते अजूनी अमोनि नरागे नरंगे नरूपे नरेखे अकर्मंग परमंग अगंजे अलेखे भुजंग प्रयाचंद नमस्तुल परनामे समस्तुल परनासे अगंजुल नामे समस्तुल निवासे निरकामंग विपूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग परनासे सुधर्मंग विपूते
सदा सचिदानंद सत्रंग प्रणासी करिमुल कुनिंदा सुमस्तु निवासी अजाय विपुते गजाय विगनी में हरियं करियं करिमुल रही में चतर चक्रवर्ती चतर चक्र पुगते स्वयं पव सुभं सर्वदा सर्व जुगते दुकालं परनासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं विभूते दुकालं परनासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं विभूते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद पातशाही दसवीं त्व प्रसाद सवैये। श्रावक शुद्ध समूह सिदान के देख फिरो कर जोग जति के सूर सुरार्दन शुद्ध सुदादिक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत गुण अधिकित प्राण पति के श्री भगवान की पाए कृपा हूं ते एक रत्ती बिन एक रत्ती के मातिम तंग जरे जर संग अनूप तंग सुरंग सुवारे कोट तुरंग कुरंग से कूद दपौन के गौन को जात निवारे पारी बुझान के भूप पली बिद न्यावत शीस न जात विचारे इते पहे तो कहा पह भूप तंत को नांगे पाए पधारे जीत फिर सब देश दिशान को बाजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत भविख भवान के भूपत कौन गने नहीं जात विचारे श्री पद श्री भगवान भजे बिन अंत को अंत के ताम सिधारे तीर्थ नान दया दम दान सुसंजम नेम अनेक बसिख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सुबान के भिख है पौन आहार जति जत तार सब सुबिचार हजार के दिख है श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लिख है शुद्ध सिपाह दुरंत दुबाह सुशासना दुर्जान दलेंगे भारी गुमान परि मन में कर पर्वत पंख हले न हलेंगे तोर अरिन मरूर मुआसन मातिम तंगन मान मलेंगे श्री पद श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहां निधान चलेंगे वीर अपार बड़े बरियार अब चार सार की तार पछैया तोरत देश मलिंद मुआसन माति गजान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोड़ नहार सो बात नहीं चकचार लवैया साहिब श्री सबको सरनायक जाचक अनेक सु एक देवैया दानव देव फनिंद निसाचर भूत भविख भवान जपेंगे जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे पुन पर तापन बाढ़ जैत तुन पापन के भोपुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिरे जग सत्र सब अवलोक चपेंगे मानव इंद्र गजिंद्र निरादप जौंतर लोक को राज करेंगे कोट स्नान गजा दिक दान अनेक स्वंबर साज भरेंगे ब्रह्म महेश्वर विष्ण सचिपत अंत फसे जम फास भरेंगे जे नर श्रीपत के प्रसह पगते नर फिर न दे तरेंगे कहा पयो जो दो लोचन मूंद कह बैठ रहे हो भक्त ध्यान लगायो नाथ फिरियोली सा समुन्द्रन लोक गयो पर लोक गवायो बास कियो बख्यान सुबैठ गए ऐसे ही ऐसे सुबह सुबितायो साच कहूं सुन ले हो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो काहू ले पाहन पूछ सरयो सिर काहू ले लिंग गरे लटकायो काहू लख्यो हर वाची दिशा में है काहू पछा को शीश निवायो को बतान को पूजत है पस को मृतान को पूजन तायु कूर किरे और जो सब ही जग श्री भगवान को पेद न पायो को बतान को पूजत है पस को मृत

प्यासा तुम चाड़ कोई अवर न त्याऊ जो बर चाहो सो तुम ते पाऊ सेवक सिख हमारे तारी यह चुन चुन सत्र हमारे मारी यह आप हाथ दे मुझे उबरी है मरण काल का त्रास निवरी है जो सदा हमारे पच्छा श्री अस तुझ जू करे हो रच्छा राख ले हो मुहिरख नहारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बन दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर दुष्कंता काल पाए ब्रह्मा बाप तरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विष्ण प्रकाशा सकल काल का किया तुमासा जीवन काल योगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जूथियो जीवन काल सब लोक सुवारा नमस्कार है ताहे हमारा जीवन काल सब जगत बनायो देव दैत जचन पजायो आदंत कै अवतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार तिसी को हमारी सकल प्रजा जिन्हें आप सुवारी शिव कन को सब गुण सुख दियो शत्रण को पल मुँह बद कियो काट काट के अंतर की जानत पले बुरे की पीर पहचानत चीटी ते कुंचरे स्थूला सब पर कृपा दृष्टि।

संभुता का मूढ़ उचारत भेदा जाको भेव न पावत भेदा ताको कृपाहन अनुमानत महामूढ़ कछ भेद न जानत महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चीनत न भेव आप अपनी बुध है जीती बरनत भिन्न भिन्न तुह तेती तुमरा लखा न जाए पसारा के विसजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंग भयो राव कई पूपा अंड जेर से तिजकीनी उत्पुज कान बहुर रच दीनी कऊ फूल राजा हवे बैठा कऊ सिमट भयो शंकर कैठा सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचम पव आजुगा स्वरूप स्वयं पव अब रचा मेरी तुम करो सिखो वार सिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो ऋण काता जे अस तुज तब सरणी परे तिनके दुष्ट दुख हवे मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार ते है ताके काल निकट नह है रक्षा होए ताहि सब काला दुष्ट रिष्ट रह तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहि निहर हो ताके ताप तन कमह हर हो रिद्ध सिद्ध करो सब हुई दुष्ट छाह चव सकै न कोई एक बार जिन तुम्हें सुभारा काल फास्ते ताहि उबारा जिन नर नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दुख तेरा कड़केत मैं स्वर्ण तिहारी आप हाथ दे लिहो उबारी सर्व ठाउर मोहु सहाई दुष्ट दुख ते लिहो बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता किल भिक्षकुल देह को हरता दुष्ट दुखिन को छह करता श्री अस्तुज भय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन वांछित फल पावे सोई दुख न दिसे व्याप्त कोई अडिल सुने गुंग जो याहि सुरस न पावई सुने मूढ़ चित लाए चतुरताया वही दुख दर्द पौ निकट न तिन नर की रह हो जो या की एक बार चौपाई को कहे चौपाई संबत सत्रह सहसपुनि जय अर्ध सहसपुन तीन कही जय पाद्र सुदी अष्टमी रवारा तीर सद्रव ग्रंथ सुधारा सुवैया

एक न मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहे हम एक न जान्यो श्री असुपान कृपा तुमरी कर मैं न कहूँ सब तो हे बखान्यो दोहरा सगल

बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु।

माटी का क्या धूप है स्वामी, मानस की गत एही। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ, एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

0: अलमल खाई सिर छाई पाई मूर्ख अंधा पत गवाई विण नावे किच थाए ना पाई।
1: अहद बाणी बड़ी मसाणी अंदरा जाने फिर पुछताणी।

निर्वैर अकाल मूरत अजुनी सैभं गुरप्रसाद जप आदि सच जुगाद सच हैपी सच नानक होसी पी सच इच्छा पूर्क सर्ब सुख दाता हर जाक वस है काम तिनाम सो ऐसा हर त्याय मेरे जियड़े ता सर्ब सुख पाव है मेरे मना जप मन सतनाम सदा सतनाम हलत पलत मुख उजल हुई है नित त्याये हर पुरख निरंजना जहार सिमरन पया तह उपाद गत किनी वड भागी हर जपना जन नानक को गुर एह मत दिनी जप हर पव जल तरना नाहो जती सती नहीं पड़या मूर्ख मुगदा जन्म भया परणवत नानक तिन की सरना जिन तू ना ही विसरिया सो कहो टल गुर सेविया अहनस सहज सबाय दर्शन परसे गुरु का जन्म मरण दुख जाय सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग सूही शंत महला पहला घर चौथा जिन किया तिन देखिया जग धंधड़ाए लाया दान तेरे घट चानना तन चंद दी पाया जिन की आ तिन देखिया जग धंधड़ाए लाया दान तेरा घट चानना तन चंद दी पाया चंद दी पाया दान हर का दुख अंधेरा उठ गया गुण जंज लाड़े नाल सोहा परख मोहनिया लया विवाह हुआ सो बसेती पंच शब्दी आया जिनकी आतन देखिया जग धंधड़ाए लाया हां बलहारी साजना मीता अवरिता एहो तन जिन स्यो गाडिया मन लियड़ा दीता लिया त दिया मान जिन स्यों से सज्जन क्यों विसर है जिन दिस आया हो हेर लिया जी से ती गह रह है सगल गुण अवगुण ना कोई हो हे नीता नीता हों बलहारी साजना मीता अवरिता गुणा कहो वै वासुला कड वास लई जाय जे गुण होवन साजना मिल सांझ करी जाय सांझ करी जाय गुणहा केरी छोड़ अवगुण चलिया पहरे पटंबर कर अडंबर अपना पिड़ मलिया जिथा जाए बहिया भला कहिया झोल अमृत पीजा
ਗੁਣਾ ਕਹੋ ਵੇ ਵਾਸੁਲਾ ਕਡ ਵਾਸ ਲਈ ਜੈ ਆਪ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਆਖੀਏ ਹੋਰ ਕਰੇ ਨ ਕੋਈ ਆਖਣ ਤਾਕੋ ਜਾਈਏ ਜੇ ਭੁੱਲੜਾ ਹੋਈ ਜੇ ਹੋਏ ਭੁੱਲਾ ਜਾਏ ਕਹੀਏ ਆਪ ਕਰਤਾ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲੈ ਸੁਣੈ ਦੇਖੇ ਬਾਜ ਕਹਿਐ ਦਾਨ ਅਣ ਮੰਗਿਆ ਦਿਵੈ ਦਾਨ ਦੇ ਦਾਤਾ ਜਗ ਵਿਧਾਤਾ ਨਾਨਕਾ ਸਚ ਸੋਈ ਆਪ ਕਰੇ।

दुख अंधेरा उठ गया। गुण जंज लाड़े नाल सो है परख मोहनिये लया। विवाह हुआ सोब सेती पंच शब्दी आया। जिन किया तिन देखिया जग धंधड़ लाया। हौ बलहारी साजना मीता अवरीता एहो तन।

पौड़ी। खसम कै दरबार ढाडी वसया, सच्चा खसम कलाण कमल विगसया। खसमो पूरा पाए मनहो रहस्या, दुष्ट

पाई पानी, नानक सिर खुथे सैतानी, इना गल ना पानी, वठै होए होए बिलावल, जिया जुगत समाणी।

चार पदार्थ कहे सब कोई, सिमरत शास्त्र पंडित मुख सोई, बिन गुर अर्थ विचार न पाया, मुक्त पदार्थ भगत हर पाया। जा कै हृदय वसया हर सोई, गुरमुख भगत परा।

0: सतगुरु जी दी पावन पवित्र तनगी गोद विच जुड़ बैठी गुरु प्रसाद संगत जीओ प्यार साहब आसीस बख्शिश करदे हां, एकाग्रता बख्शिश करदे हां, गुरु दी बख्शिश गुरु फतेह प्रवान करनी जी। वाहिगुरु जी का खालसा,
1: वाहिगुरु जी की फतेह।
0: हर कीर्तन सुने हर कीर्तन गावे, तिस जन दुख लिप्त नहीं आवे। आओ उस महान बख्शिश जिहड़ी सानू कीर्तन दे रूप मालिक ने बख्शिश कीती है प्राप्त करने लई, उस रस नू माणन दे लई जिहड़ा रस तुसी रोजाना ही अपने उस पावन स्थान सचखंड श्री हरिमंदर साहब श्री दरबार साहब तो दूर बैठे